जो है नाम वाला, और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है मेरे यंग नेम, मेरे यंग नेम, मेरे यंग नेम।